आया इन मुरुम्बल बलाग हिचा हिचा करती मुत्वेग उन्हरान के हम शक्तियाँ वर्षनाग दुदंदन दलस्ते हालों जितकलो बालबाल शिवजन दस्तरन थोड़ा हाक्षी साल्तन चावलाना तूई बदात Hetkaran, उदिस वस्ती अटला उदी वस्ती चक्की शिमु एक पस्ती हुए उखन्दी मत्वे युवाल बागत इन्ने अता चर्खुल सेना कुद इनुगी हिल्तल मीजो उन्दी जवसा थील जन इचंगों सिस्थिले सला देलवा कुंग्मिंगेक अल्चगत हरल चक्सन बालवल उओसें शिरग बाल कार जिर्खु इमु शिरक कर चिरा थोंग लिख भी जात औरता थोंगरा थोंग मेरी चेंग उच्च मालूल कुंगमिंगन इसका बस को चल चार जिसने शिरीम दलदान इरहिल इतकल थे बालूल बुइन बेना जब खर को है इन्ने संसार जो भी हिल जन थीम बालूल शीने मुद्दा दिर दोग शीने के बगा इतना शीने बुलका पासमो